ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

तेरी डुली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंसके विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल के रटकी पिहाय चले एक चिंगारी प्रतिशोध से फिर ही रावण की लंका जले By putting the dust of your feet on his forehead like a tikal god, that devotee of yours lives. He doesn't

मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

तेरा कतरा कतरा जिसने बहाया, ढूंढ निकालूंगा उनका मैं साया, बदला ये तेरा ही जीने की जिद है, छोड़ूंगा।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती

एक बार बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे भक्तों, इस सेजन पर मैं प्रवचन कहता हूँ, पूजा विधि मैं कहता हूँ। आई एम पंडित रुद्रनाथ महाराज ऑफ नंबर 64 कलकत्ता सेटलमेंट नंबर 3 मिशन रोड फ्रीपोर्ट, इनवाइटिंग यू टू जॉइन विथ मी दिस मॉर्निंग एज आई गिफ्ट यू कथा श्लोकस स्तुतिस प्रार्थनास वट एवर एप्लीकेबल। I invite you to join with me and our radio station, Radio Jagriti. We pray. Hari Om. Namo Divyai Mahadivyai Shivayai Satatam Namaha. Namaha Sarva Patrayai Nityatah Pranatah Smatam. In Pradna to Devi Mata Durga, we pray, we ask of this lady. You are a guardian of the world. Your greatness is unique. I bow before you, Mother, in this beautiful bhajan. Jag ki rakhwali karne wali Jagadambe maiya. Jag ki rakhwali karne wali Jagadambe maiya.

घर घर है सुख कर दीवाली ओ जगदम्बे मैया, घर घर है सुख कर दीवाली जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया, जग के रखवाले करने वाली जगदम्बे मैया। ओ मदर, थ्रू योर काइंडनेस वी एग्जिस्ट, थ्रू योर ग्रेस वी ट्रैवल दिस वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ योर फेथ वी आर एबल टू

निराली ओ जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया, जग की रखवाले करने वाली जग

नहीं माँ तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली ओ जगदम्बे मैया, जग की रखवाली करने वाली ओ जगदम्बे मैया, ओ जगदम्बे मैया, ओ जगदम्बे मैया। चरणों में बैठे आश लगाई, ओ मैया विद फुल ऑफ होप वी सिट एट योर फीट, मे आवर रिक्वेस्ट गो नॉट अनआंसर्ड, ओ मदर डू एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग ऑफ दिस आरती, दिस डियर दैट वी लाइट, ओ मदर ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्ट अस ऑल। एक बार बोलो श्री जगदम्बा माता की जय। प्रिय सज्जनों, ऑल आर त्योहार्स फेस्टिवल्स एंड सो ऑन अकर बट वंस अ ईयर, संक्रांति, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी एंड सो ऑन, दिवाली ऑल्सो टू, बट नवरात्रम अकर्स ट्वाइस अ ईयर। दिस इज टू टेल यू हाउ पावरफुल, हाउ मैग्निफिसेंट एंड डिवाइन इज दिस देवी माता। इन अ कपल वर्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्तोत्रम, नमस्ते जगतारिणी त्राही दुर्गे, आई बाउ बिफोर यू ओ गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, ओ प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जगतारिणी मैया, प्लीज लिसन टू माई प्रेयर, ब्लेस एंड प्रोटेक्ट मी वेयर एवर आई एम गोइंग, वेयर एवर आई एम कमिंग फ्रॉम, व्हाट एवर आई एम डूइंग, लेट इट ऑलवेज बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड। वी चैंट दिस पर्टिकुलर श्लोक फॉलोड बाय अ कपल स्तोत्रम्स, देन आई कंटिन्यू। हरि ओम, सर्वे स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, व्याये भया त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। स्तोत्रम्, ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत्व्यंदा पदारविंदे, नमः नमस्ते त्राहि, नमस्ते जगतारिणी त्राहि दुर्गे। मदर, आई कम फॉर यू अगेन, आई कम बाय यू अगेन इन प्रेयर, आई बाव एट योर फीट, पादारविंदे यू मदर, हे जगत्व्यंदा कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड, प्लीज लिसन टू अवर प्रेयर एंड प्रोटेक्ट अस ऑल। नमस्ते जगत चिंतामना स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते साधानना रूपे, नमस्ते जगतारिणी त्राहि दुर्गे। हे महायोगी, ओ मैया, व्हेन कृष्ण भगवान इज अबाउट टू टेक अवतार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यू वाज देयर, यू केम आउट एज दैट डॉटर। ओ मैया, आई बाउ बिफोर यू, यू हु क्रिएट्स माया एंड यू डिस्ट्रॉय माया, यू हु गिव्स ज्ञान, आई बाउ बिफोर यू। मैया, प्लीज give us this prayer, give us this aspect of, you know, prayer of everything maya, but bless us with goodness, happiness and divinity. Anatasya dinasya trishnaru tarasya bhayarta tasya bhitasya madasya jantuhu tvameva gatir devi nistara kartri, namaste jagat tarini trahi durge। In all different aspects.

गाय माता की जय। श्री राम, जय श्री राम। भजन इवन इफ यू कॉफ नेवर स्टॉप प्रेइंग। भजन श्रीया पर सर्व ब्यूटीफुल ब्लेस गॉड डॉटर लेट अ कम इन फ्रंट यू कैन सी द पिकअप।